0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

सारी छयान राजा नौसकाय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान।